सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।

0: तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: Kajaria Tiles, your world-class luxury.

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं फादर पीटर दयाल?
1: वो रहे सामने।
2: माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो की हेल्प से ही इजीली पुट स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। यू बी अ फ्री मैन सून आरव।
3: सेंड इट मी राइट अवे।
0: जी।
5: द एंटायर विलेज विल बेयर विटनेस टू दिस।
6: आरव, सेंड इट अप।

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव, जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो।
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा, मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत में कर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, हमें मिलना है। तुम देखो, एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।

0: पहुंच गया तुम ठीक हो
1: यस सर
0: ऑफ कोर्स इट थिंग्स विल हैपन हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फ्रेंड्स अब सो जाओ गुड नाइट मामा
2: शहजादी